0: connect your dream, connect your future, stay connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शीतला गण्डकी चार पुरे मोड़ा वाइन डिपार्टमेंट भवन संगे मोबाइल 98562340 और 98562383

0: शुक्ला गंडकी एफएम 97.6।
1: शुक्ला गंडकी टाइम चेक।
2: यति बेला रातिको ठिक 8 बज्यो।